सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 21 जुलाई 2026 मंगलवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष अष्टमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:34 पर और सूर्यास्त होगा 7:24 पर।

यकीन रखने वाले बलिदानी महापुरुषों ने संसार में चारों तरफ फैली नफरत की आंधी को हटाकर मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संसार बटा हुआ है, यह बिखराव में है, इसे एकजुट और जागरूक करके मानव एकता कायम करने वाले संतों भक्तों ने महान बलिदान दिए हैं। उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही मानव एकता दिवस का आयोजन किया जाता है।

कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शाइनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसे आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे?
1: जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए जरूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी देखिए, सबसे जरूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं, इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। देखिए, एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता, उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे बचना चाहिए
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बच्चों को ज्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें भी झिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटें या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारे। आजकल बच्चे जो है बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं।

0: अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के साथ।
1: माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
0: जी बिल्कुल,
1: और ये बहुत जरूरी है। काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल रुकना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत है
1: एक गाने।

0: के जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
1: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयां बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
0: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण है वो बरकरार रहेंगे।
1: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
0: देखिए, आप जैम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं। टेस्ट दुगना हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सही बताया आपने और ये आपको फायदा दे सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।

0: ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में
1: बहुत जरूरी है कि आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है लहसुन और ये इसकी तासीर गर्म रहती है तो इसलिए शरीर में गर्माहट भी रहती है और बहुत फायदे हैं जी और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
2: जी आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
1: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं
2: और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
1: हाँ जी
2: देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबलस्पून, किशमिश 1 टेबलस्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नर्म होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस से किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
1: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल जरूर
1: एक
2: खिलाएंगे।
1: साथ हम खाएंगे बिल्कुल। ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था।
2: जी आपका स्वाद अगली बार चेंज हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना।
1: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी। गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। सुनाता हूं आपको हर बार एक से बढ़कर एक नई लघु कथा जो आपके दिल में उतर जाती है। आज एक और नई लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं और इस लघु कथा का शीर्षक है कर्मों के रईस। घर में माँ बेटी रहती थी। रात का समय था, अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो देखा वहां तो कोई नहीं था, नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी उठाई और खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लगे और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ, चिट्ठी में लिखा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे तुम्हारी माँ से मिलूंगा, और नीचे ना नाम की जगह पर लिखा था भगवान। माँ ने कहा, यह शायद हमारी गली के किसी छिछोरे लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए गंदी हरकत की है, शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे ये सच लग रहा है। माँ को मना कर बेटी और दोनों खाने वाने की तैयारी में लग गई। उनका घर भले ही छोटा था लेकिन वो दिल से बहुत अमीर थे। घर में एक चटाई थी मेहमानों के लिए, निकाल कर बिछा दी। रसोई में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ अब दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि अगर सच में भगवान आ गए तो हम खाने में क्या देंगे उनको। उन्होंने आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। 300 रुपये उन्होंने बचाकर अपने पास रखे हुए थे और दोनों, ठंड का मौसम था ना, बारिश भी हल्की हल्की से पड़ रही थी। 300 रुपये लेकर छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान की तरफ निकल पड़े। अब रास्ते में ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। खैर, दुकान पर पहुंचकर एक पैकेट दूध का लिया, एक मिठाई का डिब्बा लिया और कुल मतलब 200 रुपये की चीजें खरीद कर वापस घर लौटा है। क्योंकि उन्हें लगा ज्यादा शायद भगवान घर पहुंच जाए, इसलिए ज्यादा देर हम बाहर ना रहें। बारिश भी शुरू हो गई तो जल्दी जल्दी वो घर आने लगे। देखा तो सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। एक ऑटो पास से गुजरा तो लड़की ने देखा उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था गोद में जो रो रहा था। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, कोई ना कोई बात है जरूर। खैर, वो दोनों ऑटो से अपने घर पहुंचे। बेटी से रहा नहीं गया, बोली, ऑटो वाले भैया जरा ऑटो को वापस लेके चलो। उनके पास वो जो रास्ते में खड़े थे ना, ऑटो वाला उनको वहां ले गया। वहां जाकर लड़की ने पूछा, क्या बात है? बच्चे को बहुत तेज बुखार था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब देखो, एक तरफ तो भगवान घर पे आने वाले हैं और दूसरी तरफ ये एक और नई समस्या आ गई। बेटी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, भगवान को तो मना लूंगी लेकिन इन्हें इस हाल में छोड़ दिया तो भगवान मुझे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो बेटी ने जो जो खरीदा था ना सब उनके हाथ में थमा दिया और तो और बचे हुए 50 रुपये भी उनके हाथ में पकड़ा दिए कि भाई मेरे पास अभी इतना ही है, इसलिए रख लो, बारिश हो रही है तो अपना छाता भी उनको दे दिया, बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी उतार के उनको दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंचे ये सोच कर कि भगवान आ गए होंगे तो ये ना कहें हम इतनी देर में पहुंचे वापिस। आकर घर पे देखते हैं तो एक और चिट्ठी आई हुई थी, पता नहीं किसकी चिट्ठी है। उठाकर बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई,
पहले से दुबली हो गई हो, लेकिन आज भी उतनी सुंदर हो। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए कंबल से बहुत आराम मिला। और हाँ, छाता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। अरे, ये सुनते ही बेटी के तो होश लग गए। निशब्द होकर बाहर सड़क पर देखा तो वहां तो कोई था ही नहीं। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर तो मत ढूंढो, मैं तो कणकण में हूं। जहां सोच पवित्र हो ना, मैं हर उस मन में हूं। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं हर उस जरूरतमंद में हूं। बेटी रोने लगी और दोनों ही भावुक हो गए। पूरी रात सो नहीं पाए। तो आपसे एक प्रश्न है, क्या ये बेटी गरीब थी या ये अपने कर्मों से रईस थी? क्योंकि मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं, आदमी इंसान कर्म लेकर जाता है। और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला आदमी अच्छे कर्म लेकर जा रहा। इसलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर बने या ना बने, अपने कर्मों से जरूर अमीर बने। कभी आपने ऐसा प्रयास किया है? अगर नहीं किया ना, अब करके देखिए। आपको नहीं, आपकी अंतरात्मा तक बहुत संतुष्टि मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगी। और जिसको आप ढूंढते हो शांति, आप अपने आप मिल जाएगी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

तो बोजान एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बात।

जहां पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या, उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या, उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या, उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या, उसने अपनी जात में फिर भी

जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे।

आगरे हैं, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मोतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा न था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

0: पहलू और गीत का आज का अंक लेकर मैं किरणी फिर से हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सावन के महीने के बारे में।
1: बन्ना रे बागा में झूला डाल्या, बन्ना रे बागा में झूला डाल्या।
0: हिंदुओं के लिए सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इसे भगवान शंकर का महीना भी कहते हैं। मान्यता है सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती लोक पर निवास करते हैं। उनको खुश करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं। सावन का महीना बारिश का भी होता है और मौसम बहुत ही सुहावना और ठंडा रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग घूमने का आनंद लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं।

0: सावन के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है।
0: और ये किसानों के लिए भी प्रिय महीना माना जाता है। हर तरफ हरियाली छा जाती है, किसानों को भी फसल के लिए बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बारिश से धरती मानो स्वर्ग सी लगती है और सुंदर दिखाई देती है।

सावन का महीना खुद में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। सावन का ये महीना मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए खुशहाल मौसम लेकर आता है। आज शाम जब बरसा सावन भीगा अपना तन मन सारा,

सावन के महीने में महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी पड़ते हैं। उनमें से रक्षाबंधन और हरियाली तीज मुख्य त्योहार है। हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सबके लिए तीज के अवसर पर ये प्यारा सा गीत।

तीज का त्योहार हो और मेहंदी ना हो। मेहंदी के बिना तीज का त्योहार या सावन अधूरा है। तीज के दिन मेहंदी लगाने का भी एक विशेष महत्व है। मेहंदी का इस्तेमाल शरीर की गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है हरा रंग, जो मेहंदी का रंग है, कई रोगों के रोकथाम में भी कारगर होता है।

तीज के दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, हरे रंग का पोशाक पहनकर झूला भी झूलती है, क्योंकि जो हरा रंग है ये प्रकृति का रंग होता है और हरा रंग अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक है। 16 सिंगार करके लोग गीत अथवा तीज के गीत गाकर उत्सव भी मनाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं और मन मोर नाच उठता है।

सावन महीने में दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार जो है वो रक्षाबंधन का आता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और सुखी जीवन की प्रार्थना करती है।

रक्षाबंधन सबसे सुखद और सार्थक त्योहारों में से एक है। ये भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है।

न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार, चाहत बहन की इतनी कि बस बना रहे प्यार। गम न कोई पास में आए, खुशियां मिले हजार, न मांगे वो धन और दौलत, न मांगे उपहार। इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का समय समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। प्रस्तुत करेंगे भरत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सुपोरी। आज आपके लिए लाया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। परिचर्चा में वैसे तो हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं मेहमान को, पर आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ा अम्बाला से दूर चलते हैं। आज हम चलते हैं दिल्ली, और आपको पता है कि अगर हम दिल्ली चलेंगे तो हम किसी टेलीफोन के या मोबाइल के माध्यम से जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं मिलवा देता हूँ जसवंत सिंह मल्होत्रा जी से। जसवंत सिंह मल्होत्रा जी दिल्ली में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है फिलहार्मोनिक सिंगर्स फाउंडेशन न्यू दिल्ली, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के टाइम में जसवंत जी ने बहुत सारे बडिंग और अपकमिंग सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसके साथ उनको एंगेज किया ताकि वो किसी परेशानी में ना रहे, अकेलेपन में ना रहे। और आइए आज हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का, जो इस समय हमसे जुड़े हैं दिल्ली से। जसवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
2: भारत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।
1: नमस्कार।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा मुखातिब हूँ
1: जी
2: आप सबसे।
1: जी जसवंत जी, आप हमसे कई साल से जुड़े हैं और आपके साथ जितने भी अपकमिंग और अच्छे सिंगर्स जुड़े हैं उनके हमने कुछ समय पहले लाइव शोज भी किए हैं, पर आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो रेडियो वितस्ता एक वेब रेडियो था, अब ये अपग्रेड हो गई एक कम्युनिटी रेडियो, यानी FM स्टेशन बना है। हमारी फ्रीक्वेंसी है 90.0 MHz। तो आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए।
2: मैं तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ रेडियो वितस्ता को FM रेडियो बनाने, 90 Hz का FM रेडियो बनाने के लिए, और सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस अच्छी चीज को सर अंजाम दिया। पर मैं ये कहूंगा कि रेडियो वितस्ता ने पिछले कई सालों में, 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: हमारे हमारे जो बच्चे हैं फिलहार्मोनिक क्लब के, उनको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स दिए, और आपके फेसबुक पेज के थ्रू ये बच्चे बड़े मशहूर भी हो गए हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में आप अपनी ही इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए।
2: मैं जसवंत सिंह मल्होत्रा, बेसिकली IIT BHU से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम किया और चीफ जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो गया
1: जी।
2: क्योंकि गाना मेरा एक पैशन था, तो उसको मैंने अपने खाली समय को अच्छी तरह से प्रयोग करने का साधन पाया, और अपने पैशन को मैं पूरा कर रहा हूँ। लगभग 5 साल पहले मैंने फिलहार्मोनिक सिंगर्स क्लब का आगाज किया, शुरू किया। अब वो फिलहार्मोनिक ट्रस्ट में भी तब्दील हो गया है, जिसमें ट्रस्ट के थ्रू हम गाने के अलावा मैंने अच्छे अच्छे यंग और टैलेंटेड सिंगर्स को खोजा कोविड के दौरान, और उनको ट्रेनिंग उनकी बाकायदा शुरू करवाई, और अच्छे अच्छे बड़े शोज में हम लोग मिलकर दिल्ली में करते हैं, जिसमें हमारे जो सिंगर्स हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रेन हैं, उनको लोग अपने प्रोग्राम्स में मौका दे रहे हैं।
1: जसवंत सर, आप ये बताएं कि आप फिलहार्मोनिक क्लब तो चलाते ही हैं और इसके बगैर भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त में उनके बारे में भी बता दीजिए।

0: कोविड जब हुआ दो वर्ष पहले, तो ये हाल हो गया था कि लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा था, जो डिस्ट्रीट्यूट थे, जिन लोगों को दिहाड़ी के मजदूर थे। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि जितने भी कोविड के मरीज हैं, उनका उनसे संपर्क किया जाए और उनके घर पे खाना पहुंचाया जाए।
1: बहुत अच्छी,
0: उसका कोई हम कोई पैसा नहीं लेते थे। हम लोग उनके घर खाना पहुंचाया लगातार जब तक उनकी डिमांड थी, और साथ ही साथ हमने एक माँ की रसोई के नाम से एक लंगर शुरू किया।
1: जसवंत सर, आपके लिए और आपकी टीम के लिए आज आप इस जो हमारा ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके लिए आज आपने किस सिंगर को चुना है जिनसे हम बात करेंगे?
0: आज के प्रोग्राम के लिए हमने चुना है कैसर सिस्टर्स को। उनमें बड़ी बहन जरताज कैसर 17 साल की, उससे छोटी बहन जरनिगार कैसर 13 साल की, और सबसे छोटी बहन एहसास कैसर बेबी, वो 9 इयर्स की हैं। और ये तीनों बच्चे लगातार कई सालों से संगीत सीख रहे हैं। छोटी वाली एहसास तो 6 साल से संगीत सीख रहे, और ये बड़े निपुण हैं अपने गायकी में, और इनको दिल्ली के बहुत सारे प्रोग्राम्स में शिरकत मिल रही है, जिसके लिए फिलहार्मोनिक क्लब को मैं खुद बधाई देता हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सर। और मैं चाहूंगा कि अब हम जो हमारे आज के मेहमान है उनसे बात करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया जनाब।

0: आइए आज हम आप सबको मिलाते हैं कैसर सिस्टर्स से, और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जरताज कैसर का। जरताज, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जरताज, आप मुझे ये बताइए कि आज कैसर सिस्टर्स में आपके साथ कौन कौन है?
1: आज मेरे साथ कैसर सिस्टर्स में मेरी दो छोटी बहनें हैं, एक है जरनिगार कैसर और एक है एहसास कैसर।
0: जी, मैं आप लोगों से एक लाइव शो में कुछ साल पहले मिला हूं, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम रेडियो पे आपका जो कार्यक्रम है वो सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरताज, आप मुझे सबसे पहले, मुझे और हमारे जो श्रोता है उनको आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें।
1: जी, मेरा नाम जरताज कैसर है और मैं 17 साल की हूँ, और मैं दिल्ली में शोज वगैरह करती हूँ, और मैंने संस्कृत में भी काफ़ी प्लेबैक सिंगिंग कर रखी है, और मैं 2019 में गोल्डन वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर की विनर थी, और अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ फिल्म क्लब के द्वारा एक गज़ल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं उसकी विनर रह चुकी हूँ 2022 में।
0: जरताज, आप संगीत सीखती हैं? अगर सीखती हैं तो कहाँ से सीखती हैं?
1: जी, मैं पंडित किशोर बैनर्जी से पिछले 6-7 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और अभी मैंने कुछ 2-3 महीने पहले गजल की तालीम लेना शुरू किया है।
0: मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गजल और जो हम गीत या कोई गाना गा लेते हैं, इन दोनों में खास अंतर क्या होता है?
1: अगर जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स, मतलब गजल तो वो चीज हो गई जो मतलब उसमें बस शेर और शायरी वगैरह, और उसको बहुत ही मतलब आराम से गाया जाता है, उसमें काफी चीजें होती हैं जो हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की इनोवेशंस होती हैं, और बॉलीवुड सॉन्ग्स को वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गजल भी होती है बॉलीवुड सॉन्ग्स में, बट वो एक बिल्कुल ही अलग चीज हो जाती है। गजल में हमारे पास काफी टाइम होता है, और हम अपने मतलब एक्सपेरिमेंट्स उसमें शो करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसके लिए मतलब क्लासिकल की तालीम होना भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात है, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से जरताज और आपकी दोनों बहनों जरनिगार और एहसास को। उनसे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इन दो बहनों में से बड़ी हैं, तो एक तो आप रियाज करती हैं, तो क्या रियाज करते हुए जो आपकी छोटी सिस्टर एहसास है, क्या रियाज करते भी वो तंग आपको करती है कि नहीं करती है?
1: कभी कभी करती है।
0: तो आप क्यों ना ऐसा करें कि जब आप रियाज करते हैं उनको भी रियाज पे लगाएं, ताकि वो भी आपको तंग ना करें और रियाज भी हो जाए।
1: जी जी, हम लोग ज्यादातर तो यही करते हैं कि मतलब अगर मैं क्लासिकल का रियाज कर रही हूँ तो इसको दूसरे रूम में भेज देती हूँ, ताकि वो अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह जो भी है उसकी प्रैक्टिस कर ले। और हमारा मतलब ऐसे होता है, एक साथ हम बहुत कम बैठते हैं, अगर हमें तीनों को एक साथ कोई रिकॉर्डिंग करनी हो या कुछ ऐसा गाना तैयार करना हो, हम तभी एक साथ बैठ के रियाज करते हैं।
0: जरताज, आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे श्रोताओं को आज सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे?
1: जी, मैं एक लता मंगेशकर जी की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, हम है मताए कोचा, वो सुनाना चाहती हूँ।

0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब सरताज। और मैं देख रहा हूँ कि जब हम आप लोगों से एक शो में मिले थे, तब से आज तक आपकी आवाज बहुत निखर गई है। और जब आपने कहा कि आप गजल सीखना भी आपने शुरू कर दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी आवाज है उसके अलग अंदाज को आप समझ पाते हैं और आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं। जरताज, आपसे जानना चाहूंगा कि आप फिल हार्मोनिक ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो जसवंत सिंह मल्होत्रा जी का क्या रोल रहता है आप जैसे बडिंग और अपकमिंग कलाकारों के लिए, सिंगर्स के लिए?
0: जी, जसवंत अंकल का तो हमारे सिंगिंग करियर में काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहले उतने शोज वगैरह नहीं होते थे, पर जब से हमने वहाँ पे परफॉर्म वगैरह करना शुरू किया तो बाकी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह आते थे सुनने के लिए, उनको हमारी आवाज़ पसंद आती थी तो वो हमें अपने शोज में इन्वाइट करते थे। और इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा ये चेंज आया हमारे सिंगिंग करियर में, और वो हमें बहुत यूनिक गाने जो किसी ने सुने भी नहीं है, इस टाइप के गाने हमें प्रिपेयर करने के लिए देते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: हम भी उनको इस चीज़ के लिए साधुवाद हमेशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के आगे की तरफ ले जाता है और दुनिया के सामने ले आता है, तो सबसे अच्छी बात यही होती है। संगम कला ग्रुप के साथ भी आप जुड़े हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, संगम कला ग्रुप में तो जब मैं फाइनलिस्ट थी, तो ये कुछ 2-3 साल पहले की बात है, और इस साल तो हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जो था 2-3 साल पहले ही था। जी, जरनिगार ने पिछले साल इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वो संगम कला ग्रुप का जो दिल्ली स्टेट फाइनल था उसकी विनर बनी थी।
1: जरताज, आपकी उम्र में जो इस समय सिंगर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद कोई और जो आपका मनपसंद गीत हो वो आप हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाएं।
0: जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत बचपन से सीखना शुरू किया था, जब मैं 5-5.5 साल की थी, तो मेरे बर्थडे पर ही मेरे पापा ने मेरा एडमिशन म्यूजिक स्कूल में करवाया था एक, तो मैं तब से सीख रही हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, और खुद का एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद नहीं चाहेंगे कुछ करना, तो कोई हमें कितना भी ये कर ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारा खुद का शौक होना चाहिए उसके लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैंने गज़ल सुनाई थी अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ नया सुना दो, कोई नया गाना,
1: हमारे श्रोता भी खुश हो जाएंगे आपकी आवाज़ में सुन के।
0: जी जी, तो मैं गुरु मूवी से एक बहुत ही फेमस गाना है माया माया, मैं वो सुनाने जा रही हूँ।
1: आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: बहुत खूब बहुत खूब जरताज। और मैं जरताज आपको पहले भी ये कहा कि आपको अपना रियाज करना है, अपनी जो तालीम है वो लेनी है, और साथ में आपको एहसास का और जरनिगार का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप बड़ी हैं तो आपके लिए जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। हमारी ओर से, रेडियो विदस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: आइए अब हम जरनिगार से बात करते हैं।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जरनिगार, आप कैसी हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और जब हमने शो किया था तब आप आज से थोड़ी छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ इस रेडियो शो में बात करके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया।
0: जरनिगार, में आप तीनों बहनों को हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ, और प्रभु करे आप तीनों बहनों को अपनी मेहर वो आपके ऊपर रखे और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। सबसे पहले जरनिगार, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: मैं जरनिगार कैसर हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं अभी 13 साल की हूँ। रिसेंटली अभी मैं संगम कला ग्रुप के दिल्ली स्टेट लेवल की फर्स्ट रनर अप बन चुकी हूँ और मैंने अपने स्कूल को भी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है 3 कैटेगरीज में।
0: जी बहुत अच्छी बात है। और आप जो मैं देख रहा था, आप फर्स्ट रनर अप खोज नए फनकार की भी है, तो कैसा लग रहा है कि जब आप एक समूह के सामने जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपको गाना होता तो कैसे आप फोकस अपने गाने पे करते हैं?
1: कोई राज नहीं होता है, बस हमें सोचना, कॉन्फिडेंस पहले से हम लोग को भी प्रैक्टिस इतनी हो गई है गाते हुए स्टेज पे कि हम लोग को अब उतना वो डर नहीं लगता और हम लोग नर्वस नहीं होते हम लोग।
0: okay.
1: तो प्रैक्टिस से हो जाता है।
0: और जो आपको इस समय FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर सुन रहे हैं, आप उनके लिए कौन सी पहली प्रस्तुति आज देना चाहेंगे?
1: मैं अभी आपको लता मंगेशकर जी का एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ, नैनों में बजरा छाए।
0: जी शुरू कीजिए।

0: वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह वाह वाह जरनिगार, बहुत अच्छे से आपने इस
1: शुक्रिया।
0: गाने को निभाया, क्योंकि जब कोई भी गाना लता मंगेशकर जी ने गाया हो तो उसको गाने के लिए मैं बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत आपके इस काम में दिख रही है। अच्छा, मैं आपसे एक अलग से सवाल करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी बहन है जरताज और छोटी है एहसास, आपको सबसे ज्यादा तंग घर में कौन करती है, जरताज या एहसास?
1: एहसास।
0: अच्छा, एहसास वो रियाज भी करती है और आप दोनों को तंग भी करती हैं?
1: जी, दोनों ही करती हैं।
0: तो क्या आप उनको डांट लगाती हो या प्यार से समझाती हो?
1: डांट लगाती हूँ लेकिन वो सुनती नहीं है, फिर भी तंग करती है।
0: चलिए, अभी हम एहसास के साथ भी बात करेंगे, बट पहले अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक बच्चा सपोज सिंगिंग में वो जाना चाहता है, उनके उस काम में एक सिंगर, अच्छा सिंगर बनने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हम लोग, उनने कभी मना नहीं किया, और म्यूजिक के फील्ड में हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं हमें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं कर पाते सब, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने हम लोग के लिए सब कुछ किया।
0: बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे जो बड़े, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे माँ और हमारे पिता होते हैं, और मैं ये जरूर चाहता हूँ, हर एक बच्चे को यही कहता हूँ कि जब तक हम भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी हम देखें, उससे पहले हम अपने माता पिता को देखते हैं, और उनकी इज्जत और उनका सहारा हमेशा हर एक बच्चे को मिलता रहे, और इसके लिए हम अपने ओर से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं।

0: हेलो नमस्ते एहसास, कैसे आप? कैसी हैं?
1: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। और हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत उतावले हो रहे हैं एहसास को सुनने के लिए। वैसे तो हमने उनको बोला है कि हम एहसास से बात करेंगे, बट आपका नाम है एहसास कैसर। जितनी एहसास बड़ी है, नाम उससे बड़ा नहीं लग रहा, या अब एहसास बड़ी हो गई है?
1: मैं बड़ी हो गई हूँ।
0: मैंने आपका एक गाना देखा है जो आपने जसवंत अंकल के साथ गाया था, और आपने काली स्पेक्स पहनी थी। वाह वाह, क्या कमाल का गाना था वो। और शरारतें कौन करता है आपके घर में, जरताज या जरनिगार?
1: अगर ज्यादा शरारती की बात हो तो मैं ही करती हूँ, लेकिन दोनों में से जरताज को कह सकते।
0: चलो अच्छा, ये बताओ कि जब जरताज और जरनिगार घर में रियाज करते हैं, तो क्या आप गौर से और ध्यान से उनको रियाज को देखते हैं, सुनते हैं?
1: मैं ज्यादातर सुनती हूँ, बाकी कभी कभी शरारती करते हूँ।
0: जो बच्चा शरारत नहीं करेगा वो बच्चा कैसा हो गया? तो इसलिए एहसास शरारतें बरकरार रखनी है, पर जब रियाज करना है तब जो फोकस है वो रियाज पे करना है। और आपके बारे में जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे काम आपने किए हैं, बहुत सारे शोज आपने किए हैं, तो हमारे रेडियो विदस्ता के सुनने वालों को आप सबसे पहले क्या सुनाएंगे?
1: मैं आशा भोसले जी का एक सॉन्ग सुनाना चाहूंगी, सत्तूबा।
0: हाँ, आप शुरू कीजिए।

0: बहुत खूब
1: शुक्रिया।
0: एहसास बहुत खूब एहसास। वाकई आपने कहा कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो 9 साल की एहसास कैसर वाकई बड़ी हो गई है। इतना मुश्किल गाना आपने लिया और आपने बखूबी उसको पेश किया हमारे श्रोताओं के लिए। अच्छा मुझे एहसास एक बात बताओ, जब आप स्कूल जाती हैं, आपके वहाँ पर जो दोस्त हैं, क्या आपके दोस्त आपको स्कूल में भी कहते हैं कि एहसास कोई गाना सुनाओ?
1: कभी कभी कहते हैं।
0: और आप सुना भी देते हो?
1: हाँ।
0: अच्छी बात है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है उसके लिए कोई स्टेज की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर वो कलाकार है वहीं से स्टेज की शुरुआत होती है। ठीक है बेटा
1: जी।
0: अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जिंदगी में आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक पहुँचना है आपने?
1: मेरा ये लक्ष्य है कि मैं जब मैं बहुत बड़ी स्टार बनूं और सब लोग मुझे मेरे गाने से, मेरे आवाज से पहचाने।
0: और अगर उस समय जब मैं आपके सामने आऊं तो क्या मुझे आपको मिलने का मौका मिलेगा जब आप बहुत बड़ी स्टार बनी होंगी?
1: जी जरूर।
0: मैं ये चाहूंगा कि अब आप तीनों बहनें साथ आएं और मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के समापन पर हम तीनों बहनों से एक गाना सुने। उससे पहले एहसास मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मम्मी पापा को क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, अगर किसी दूसरे फील्ड में जाना है तो उसमें भी कर सकती हो। और उन्होंने कहा है कि जो भी तुम्हें म्यूजिकल चीजें खरीदनी हो वो हमें बताना, हम लोग थोड़ा सा भी लेट नहीं करेंगे। और हमेशा हमारी बहुत मदद की है, हम मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे पापा भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है।
0: हमारी ओर से, रेडियो विकसता परिवार की ओर से आप तीनों बहनों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जरनिगार और जरताज भी अब आपके साथ ज्वाइन करें। जरताज आप मुझे ये बताएं कि इस छोटे से कार्यक्रम में अंतिम दौर में आप तीनों बहनें हमें और हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे?
2: हम अभी आपको एक ट्रिपलेट सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं, देखो मौसम क्या बाहर है।
0: शुरू कीजिए।

0: शुक्रिया।
1: वाह वाह वा, आप लोगों ने तो मौसम ही बदल दिया, जैसे हम कहते हैं कि जरताज जरनिगार एहसास, आपने तो मौसम बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, और इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और हमारी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, FM 90.0 MHz की ओर से, आप तीनों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका करियर ऐसे ही चलता रहे, आपकी आवाज ऐसे ही खुशनुमा होती रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: शुक्रिया।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे कैसर सिस्टर्स, जरताज कैसर, जरनिगार कैसर और एहसास कैसर। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सुपोरी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: तुछु बोजान FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हो।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण।

सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं मिसेज आरती कुमार, प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।
1: नमस्कार अंबाला, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं आपकी रेडियो सखी सेजल आपका स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम घर परिवार में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और सभी व्यस्त हैं अपने घरों की साफ सफाई में, तो आज इसी टॉपिक पर हम आपके लिए लेकर आए हैं घर परिवार का नया एपिसोड और इसमें हम बात करेंगे साफ सफाई से जुड़े मुद्दों के बारे में और आप अपने घर को किस तरीके से और सुंदर बना सकते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास मेहमान, मिसेस आरती कुमार, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, यानी कि शिक्षा विद्वान, और यह एक प्रधानाचार्य भी रह चुकी हैं। यह बहुत अच्छी कुक भी हैं, साथ ही कुकिंग क्लासेस भी लेती हैं और गायिका तो ये बहुत बेहतरीन है ही। सो वेलकम मैम।
2: थैंक यू सेजल, आई एम रियली सो प्लीज्ड बीइंग हियर। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस रेडियो स्टेशन पे आकर कि मैं उस बच्चे को इंटरव्यू अपना दे रही हूँ जिसे मैंने खुद पढ़ाया है। आई लव यू बच्चे, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं आपका ही थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ।
2: बिल्कुल, थैंक यू।
1: और मैम, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक टीचर हैं और आपने हमें बचपन में यही सिखाया कि अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, अपने आप को क्लीन कैसे रखें, साफ सफाई कैसे मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो यही पूछना चाहूंगी कि आपके घर में इस चीज को लेकर क्या माहौल रहा है।
2: बेटा, ऐसे है कि साफ सफाई की तो मैं भी बहुत ही कायल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें खुद को भी साफ रखना चाहिए, अपने आसपास से सराउंडिंग्स को साफ रखना चाहिए, पूरे वातावरण साफ रखना चाहिए। और इस वजह से लाइक बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई लव टू टीच पीपल टू कीप देयर सराउंडिंग्स, एंड इसके अलावा खुद को भी हमेशा साफ रखो, हाइजीनिकली साफ रखो। जब हम खुद साफ रहते हैं तो हमारा सारा दिन अच्छा रहता है और हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहते हैं।
1: जी मैम, ना नई अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है, हम खुद भी अच्छे से तैयार हुए होते हैं, वेल मेंटेन्ड एंड वेल ड्रेस्ड होते हैं। तो अब आज का टॉपिक हमारा इसी पर है, साफ सफाई पर। तो जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, त्योहार आने वाले हैं, तो लोग अपने घरों की सफाई करना शुरू कर चुके हैं। तो एक गृहिणी के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी किचन, यानी कि रसोई। तो आपके मुताबिक उस रसोई को, उस किचन को कैसे सजाया या साफ किया जा सकता है?
2: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि दिवाली आ रही है, सब लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हम किचन से शुरू कर लेते हैं कि चलो हमारी रसोई घर जहाँ पर शुद्ध खाना बनता है उस जगह को तो साफ करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे होता है कि अगर आपने रसोई में इस्तेमाल करने वाले डब्बों को अगर साफ करना शुरू किया तो उसके लिए खासकर एक ये होता है कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो ज्यादातर गंदे हुए होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, तो हम ज्यादातर, कई लोग ज्यादातर उसे फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें भी साफ करा जा सकता है और नया बनाया जा सकता है।
1: वो कैसे मैम?
2: ऐसे है, प्लास्टिक के डिब्बे के लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी ले लें, उसमें आप 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा व एक नींबू का रस मिलाकर घोल बना लें, फिर इसमें प्लास्टिक के डिब्बे डाल दें, 15-20 मिनट बाद उन्हें निकालें और स्पॉन्ज से साफ कर लें। इससे जिद्दी दाग के साथ साथ बदबू को भी राहत मिल जाएगी।
1: अगर मैम डब्बे स्टील के या एल्युमिनियम के हों तो उन्हें कैसे साफ करें?
2: बेटा, उसका भी बहुत अच्छा प्रोविजन है मेरे पास।
1: क्या मैम?
2: अगर स्टील के डिब्बे की बात करें तो आप बेकिंग सोडा को और पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को डिब्बों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, बाद में लिक्विड सोप और पानी से धोकर तुरंत एक सूती कपड़े से पोंछकर सुखा लें। और हाँ, एल्युमिनियम के डब्बों के भी बारे में बता देती हूँ।
1: जी बिल्कुल।
2: एल्युमिनियम के डब्बों के लिए बेस्ट है कि 2 नींबू का रस निकालें और उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक मिला दें। इस पाउडर को कंटेनर में डालें और स्क्रबर की मदद से रगड़कर गुनगुने पानी से धो लें। इससे रसोई में लगे डब्बे एकदम नई सी चमक देंगे।
1: जी मैम, डब्बे तो चमका दिए बिल्कुल हमने किचन के, लेकिन एक और चीज है कि जब हम कभी ना किचन की सफाई कर रहे होते हैं ना, तो डब्बों में हमें कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं जो कि खराब हो जाती है, जनरली हम भूल जाते हैं रख के, तो उन्हें हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं?
2: अगर दाल या अनाज वगैरह प्रिजर्व करना हो आपने, तो पहले तो थोड़ा सा सरसों का तेल हाथों में लेकर ना उसको मले, दाल पर रगड़े, ठीक है, और फिर उसे थोड़े थोड़े दाल व अनाज पर मल दें और थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दें। एक और आसान तरीका भी होता है कि आप दालों व चावल के डिब्बे में एक एक तेज पत्ता रख दें, इससे कभी जाले नहीं लगेंगे दालों में। या फिर एक और बात बताऊं, जो अखबार हम पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल भी प्रिजर्वेशन में हो सकता है। अखबार के कागज की स्याही की गंध कीड़े पास नहीं आने देती है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी टेक्निक बताई। एक टेक्निक मेरे दिमाग में भी आ रही, एक टिप मेरे मम्मा ने भी मुझे बताया था कि अगर हम दाल, मैदा या सूजी हमारे घर पर है तो उसे अगर हम फ्रीजर में रख दें तो वहां पर भी वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहती है। और जैसे आपने बताया कि नीम की पत्तियां भी हम यूज कर सकते हैं, पारे की गोलियां भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है अपने खाने को प्रिजर्व करने का। और जो खाने के शौकीन है उनके लिए ये टिप तो बहुत ही बाकमाल रहेगी। मैम, अभी खाना प्रिजर्व करने की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ खाना बनाने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो कभी कभी तेल के या घी के छींटे जो हैं स्लैब्स पर या बर्तनों पर पड़ जाते हैं, तो वो दाग से बन जाते हैं, तो उन्हें कैसे हम क्लीन कर सकते हैं?
2: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, इसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगी कि तेल के दाग कैसे हटाए जाए। ये वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है गृहिणियों के लिए, और इसको साफ करते करते काफी वक्त लगता है, तो ज्यादा वक्त ना लगे इसलिए आपको एक उपाय बताती हूँ। 2-3 कप कोला और 2-3 चम्मच डिश वॉश लिक्विड मिलाकर घोल तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर इसे स्प्रे बोतल में भरें, जिस दीवार पर चिकनाई के दाग हो वहां स्प्रे कर लें, थोड़ी देर बाद स्पंज से साफ करके पोंछ लें, चकाचक साफ हो जाएगा।
1: और मैम, साथ ही ये तो हम कर लेंगे आपके टिप्स से, लेकिन ना कांच पर और स्पेशली नलके जो होते हैं, टैप्स होते हैं हमारे घर के, उनके ऊपर दाग जम जाते हैं, वो बहुत मुश्किल से साफ होते हैं, तो उसके लिए कोई इजी टिप हो सकता है?
2: हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, मैं नलके के बारे में बताती हूँ कि जैसे आपने कोई कांच का बाउल ले लिया, प्लास्टिक का ना लें, कांच का बाउल ले लिया, और उसके अंदर में आपने थोड़ा सा सफेद सिरका डाला, थोड़ा सा आप एक का ढक्कन डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें आपने पेस्ट डालना है, जो हम पेस्ट करते हैं टूथपेस्ट डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए किसी भी एक पुराने टूथब्रश से, मिक्स करके, और उसको जब आप नलकों पर लगाएंगे और जस्ट 2 मिनट, वो 7 साल सूखने लग जाएगा, 2 मिनट बाद आप उसको कपड़े से पोछेंगे, सारे नलकों के दाग एकदम व्हाइट हो जाएंगे, एकदम सब सफेद, सब ठीक हो जाएगा, स्टील का स्टील आपको चमक जाएगा जैसे अभी नया नलका लगाया हो, यू नो।
1: जी मैम, ये तो बहुत बढ़िया टिप।
2: और हाँ बच्चे, आप कांच के भी बारे में पूछ रहे थे,
1: कांच के बारे में भी,
2: तो कांच का ऐसे है बेटा कि सफेद सिरके व कोला को बराबर मात्रा में ले लो, ठीक है, फिर इस घोल को स्प्रे बोतल में भर लो और अच्छी तरह हिलाकर खिड़की के कांच या आईने पर स्प्रे करें, फिर 4-5 मिनट ऐसे ही रहने दें, फिर कपड़े से साफ कर दें, बस सब कुछ क्लीन।
1: जी मैम, इसके साथ साथ घर के शीशे भी एकदम नए हो जाएंगे,
2: नए हो जाएंगे,
1: हमारे टैप्स भी नए हो जाएंगे, और जो तेल के छींटे हमें परेशान करते हैं उसको भी आपने झट से हमारे स्लैब से दूर कर दिया।
2: थैंक यू।
1: आगे और आपको टिप्स बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैम की मधुर आवाज में हम एक गाना सुनना चाहेंगे।
2: जरूर, मैं मुखड़े के स्टार्टिंग के बोल देती हूँ, फिर आप ये गाना चला दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल।
2: सा

0: था बहुत ही खूबसूरत। अब साफ सफाई के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन घर की साफ सफाई के साथ साथ बाहरी साफ सफाई के साथ साथ अंदरूनी सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है तन और मन की सफाई। घर की सफाई में हम इस कदर उलझ जाते हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, जिस वजह से ज्यादा थकान महसूस होती है। और अब मैम यही चीज मैं पूछना चाहूंगी कि गृहिणियां अब इस चीज का किस तरीके से ध्यान रख सकती हैं।
1: ये आपने बहुत सही कहा है कि गृहिणियां जो हैं वो बेचारी काम कर करके सिर्फ घर का, बच्चों का, पति का, सबके काम करने में इतनी उलझ जाती हैं कि वो खुद का नाश्ता खाने को भी उनके पास वक्त नहीं बचता है और वो करना ही भूल जाती हैं। तो इसलिए सारा दिन जिससे हमें ताकत मिलती है वही चीज वो भूल जाती हैं। और इसलिए सुबह लाइट और पौष्टिक आहार ले लेना चाहिए वक्त रहते, जैसे उपमा, पोहा या ओट्स, या भीगे हुए काले चनों को छोंक कर भी खा सकते हैं। इतना तो औरतों को याद रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें और फिर काम पे लगें।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, एक और बात, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत तली हुई चीजें ना सुबेरे के वक्त खाएं, पकौड़े वगैरह, सैंडविच या बहुत भारी भरकम तले वाले नाश्ते से खुद को बचाए रखना चाहिए।
0: जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाश्ता जो है हमें पूरे दिन काम करने की एनर्जी देता है, हमारे अंदर जान डालता है, और इसके साथ साथ हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है। इसीलिए आप जब भी काम कर रहे हो तो अपने पास पानी या नींबू पानी जरूर रखें, या फल और सब्जियों का जूस भी रख सकते हैं, जो ताकत भी देगा और थकान से होने वाले सिर दर्द से भी बचाएगा।
1: हाँ, पानी तो बहुत जरूरी है, लेकिन जब काम कर रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक भी लेना जरूरी है। सिर्फ पानी पीकर नहीं गुजारा होगा, है ना। काम करते करते बीच में कुछ न कुछ खाते रहें, जैसे भुने मखाने, बादाम आदि, जिससे ऊर्जा बनी रहे।
0: हाँ, एनर्जी के बिना तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही हमें घर में क्रॉस वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि धूल बाहर जाए और ताजी हवा अंदर आए। इसीलिए घर की एक आध खिड़की खुली रखें। और एक और जरूरी बात, जब हम सफाई कर लेते हैं तो बॉडी पर बहुत ही इरिटेशन महसूस होती है, तो इसके लिए सफाई के बाद नहाते वक्त गुनगुने पानी में फटकरी और नमक मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैम, इस पर आपका क्या विचार है?
1: जैसे मैंने आपको आगे भी कहा था कि आसपास की सफाई के अलावा खुद की हाइजीन की भी हमें बहुत जरूरत है कि हम खुद को कैसे साफ रख सके। खुद को ठीक रखने के लिए, साफ रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चाहे तो थोड़े पानी में नीम की पत्तियां डालकर उबाल लें व उस पानी को बाल्टी के पानी में मिलाकर उससे नहाएं। इससे त्वचा के संक्रमण का जोखिम कम होगा और थकावट से भी आराम मिलेगा। और एक और बात, जैसे कई बच्चों को पिंपल्स निकल रहे होते हैं, है ना, तो उनकी स्किन में जो ट्रबल हो रहा होता है वो भी अगर नीम के पानी से इस तरह से नहाएंगे तो उनकी त्वचा और निखरेगी और ये सब मुसीबतों से भी वो छुटकारा पा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जैसे मैम, अब सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, साथ साथ हम सफाई में भी लगे हुए हैं, तो धूल की वजह से ना कहीं स्किन बहुत ड्राई हो जाती है।
1: यस।
0: अब इसके लिए आप नहाने के बाद मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल है वो
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल वो बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि धूल मिट्टी से हमारे हाथ करकरे से हो जाते हैं, हमारा स्किन बहुत ड्राई और ऐसे कहीं कहीं कट्स भी आते हैं कुछ लोगों के, मैंने देखा है। तो इट इज बेस्ट कि आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें नहाने के बाद।
0: और साथ ही जब हम सफाई कर रहे हो तो उससे पहले अगर हम ऑयल यूज कर लें अपने हाथों पर, फेस पर हल्का सा यूज कर लें और बालों पर भी लगा लें, तो जो धूल है हमारे बालों में नहीं जमेगी, हमारे स्किन पर नहीं ठहरेगी, जिससे इरिटेशन बहुत ही कम होगी, है ना।
1: बहुत सही कह रहे हैं आप। यस
0: मैम, अब एक और जैसे छोटी सी दिक्कत है जिसकी एक टिप आपसे पूछना चाहूंगी कि साफ सफाई करते टाइम ना हमारे बाल बहुत रफ हो जाते हैं धूल मिट्टी की वजह से, और झड़ने भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो इसके लिए कोई सोल्यूशन है या टिप है आपके पास?
1: बिकॉज वो मैं खुद भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया है कि बहुत ही आसान तरीका है, और आप हफ्ते में एक बार अगर करो ना तो चाहे धूल मिट्टी लग रही हो तब या चाहे बगैर उसके भी, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे बेटा, और बहुत पौष्टिक हो जाएंगे आपके बाल। उसके लिए क्या करना है, रात को आप पहले अपने तेल लगा लीजिए, अच्छे से मालिश कर लीजिए सिर में, फाइन। और उसके बाद सुबह एक कटोरी में आप एक अंडा फेंट लीजिए और उसके अंदर एक नींबू का जूस भी मिक्स करना है। बस ये दो आइटम्स अच्छे से इनको मिक्स करके और आप अपने बालों की चीर खोल खोल के

0: फिर उसको निचोड़ के वो स्टीम वाले उस टॉवल से अपने पूरे बाल लपेट लीजिए और थोड़ी देर और कुछ करते रहिए। उसके बाद जब आप अपने बाल खोलेंगे तो आप नया ही रूप देखेंगे उन बालों का। वो बड़े स्ट्रेंथ वाले हो जाएंगे और उसके अंदर में लस्टर आ जाएगा, चमक आ जाएगी। लोग कहेंगे वाह आज किस शैम्पू से नहाए हो आप।
1: बिल्कुल ब्यूटी पार्लर स्पा वाला लुक
0: यस।
1: और जो लोग एग यूज नहीं करते हैं उनके लिए, मैं अभी आपने जब बताया ना कंडीशनर का, तो मुझे एक टिप याद आया कि जो हम चावल होते हैं, चावलों का जो पानी एक्स्ट्रा स्टार्च निकलता है, उसके अंदर हम शैम्पू डालकर अगर वो अपने सिर पर लगाए नहाते टाइम, तो वो भी एक कंडीशनिंग का बहुत अच्छा सोर्स है और हमारे बाल उससे बहुत स्मूथ हो जाते हैं उसे यूज करने के बाद।
0: उसे भी सुखाते होंगे थोड़ी देर, है ना, लगाकर।
1: उसको लगाकर आप लाइक शैम्पू यूज कर रहे हैं तो साथ साथ ही वो आप वॉश कर सकते हैं, तो वो एक इंस्टेंट आपको सोल्यूशन उस टाइम मिल जाएगा अगर आपको कंडीशनिंग चाहिए।
0: बहुत बढ़िया टिप दिया आपने।
1: जी। और मैम जैसे अभी हम किचन की बात कर चुके हैं, अंदरूनी सफाई की बात कर चुके हैं, अपनी बॉडी केयर के बारे में बात कर चुके हैं, अब थोड़ा हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। ड्राइंग रूम में जैसे हमारे सोफा होते हैं, डाइनिंग सेट होता है, तो सोफे जैसे जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां पर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे साफ कर सकते हैं अगर लेदर या कोई कपड़े के सोफे अगर हमारे पास हो तो?
0: इसका भी इलाज है, अभी मेरे दिमाग में सब कुछ याद है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कैसे साफ करते हैं। कि जैसे अब हमारा तो लेदर का सोफा है, तो उसके लिए हम कपड़े से ही साफ करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आधा कप ओलिव ऑयल में आपने 1/4 कप विनेगर डाल देना है, ठीक है, व्हाइट विनेगर जो होता है सभी के घर में सिरका, वो डाल दीजिएगा आप 1/4 कप, और उसको अच्छे से मिलाकर एक बोतल में भर लो और फिर उसको आप छिड़क लीजिए पूरे सोफों के ऊपर में, और फिर एक मुलायम से सूती कपड़े के साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ ही उसको आप अच्छे से रगड़िए, सारे दाग धब्बे छूट जाएंगे और लेदर एकदम चमक उठेगा, ऐसे लगेगा अभी खरीदे ये सोफे।
1: जी बिल्कुल, न्यू लुक आएगा दिवाली पे, वैसे भी न्यू लुक घर का बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और एड ऑन करना चाहें या कुछ सोफे जो अलग ढंग के, जो लेदर के नहीं है जिनके घर पे सोफे, उनके लिए अगर कोई टिप अगर आप हो जाए
0: उसके लिए भी है, जो कपड़े वाले होते हैं, है ना सोफे, तो उसके लिए तो ये है कि कई बार जैसे मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रेन है और कभी उनके उनसे कुछ गिर जाता है सोफे पर, कोका को लगे या कुछ भी गिर गया हो, तो हम क्या करते हैं कि एक कटोरी में थोड़ा सा सर्फ मिक्स करते हैं, उसका झाग बनाकर और उसको कपड़े में डिप करके उस दाग को पहले उससे मिटाने की करते हैं, थोड़ी देर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, उसके बाद एक और साफ कपड़े से साफ पानी में डिप करके उसके ऊपर रगड़ते हैं, तो वो सोफा भी साफ हो जाता है।
1: वाओ, ये तो हमने मतलब आपको अगर न्यू लुक चाहिए अपने घर में, अपने डाइनिंग रूम में या अपने ड्राइंग रूम में, किचन में, तो आप इन टिप्स को यूज कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं टिप्स आपको कैसे लगे। और बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि मैम को भी अपनी आवाज को थोड़ा आराम देना है और हमें भी। लेकिन लेकिन लेकिन जैसे कि मैंने बताया वो बहुत ही अच्छी गायिका है, तो ब्रेक पर जाने से पहले उनकी मधुर आवाज में एक गीत हो जाए।
0: जरूर, मैं एक छोटा सा मुखड़ा गाती हूँ, फिर आप ये गाना जरूर सुना दीजिएगा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और कार्यक्रम है घर परिवार। अब आ चुके हैं हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और आपको पता है जब आप सॉन्ग ब्रेक पर थे ना, तब यहाँ पर मौजूद मिसेस आरती हमें बता रहे थे कि किस तरीके से हम रूम फ्रेशनर्स बाजारी नहीं घर पे ही कैसे बना सकते हैं और कैसे घर को खुशबूदार बना सकते हैं। तो मैम, मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं के साथ भी जो टिप्स आपने मुझे बताए वो इन्हें भी ज़रूर बताएं।
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो सबको पता चलना चाहिए। अब देखिए, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फल घर में आ रहे होते हैं, जिनमें संतरे भी होते हैं, और संतरे हमें बहुत पसंद होते हैं, लेकिन हम खाते हैं मगर अक्सर हम छिलके फेंक देते हैं।
0: जी मैम।
1: लेकिन हम इन्हें भी उपयोग में ला सकते हैं, क्या ये पता था आपको?
0: नहीं, वो कैसे?
1: पता है क्या करना है, एक पैन में आप 2 कप पानी ले लीजिए, 3-4 संतरे के स्लाइसेस, उनके छिलके, 5-6 नींबू के स्लाइसेस, वह नींबू 10-12 लौंग भी डाल दो, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े डालकर इस पानी को आप उबालिए, और इसको इतना उबालिए कि ये हाफ हो जाए, आधा हो जाए। जब ये पानी उबलकर आधा हो जाए तो इसे स्प्रे बॉटल में डालकर सारे कमरों में छिड़क दें। और हाँ, कपूर सिर्फ पूजा में ही काम नहीं आते, बल्कि इनका भी रूम फ्रेशनर बन सकता है।
0: इनका, कपूर का रूम फ्रेशनर?
1: जी।
0: वो कैसे मैम?
1: वो ऐसे कि कपूर की 6-7 गोलियों को बारीक पीस लें, इसे स्प्रे बोतल में डालें, इसमें डालें कुछ बूंदे गुलाब जल की, और बोतल की क्षमता अनुसार पानी भी भर लें। बोतल को बंद करके अच्छी तरह से हिलाएं और अपना घर खुशबू से महकाएं।
0: जैसे कि आपने बहुत ही कमाल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं हमारे श्रोताओं को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी ये बहुत पसंद आए होंगे, और ये काफ़ी किफ़ायती और बचत वाले भी हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हमारा काफ़ी खर्चा होता है बाहर से चीज़ें लाने में, घर की डेकोरेशन में। तो इन टिप्स ट्रिक्स से आप सेविंग्स भी कर पाएंगे और घर को सजा भी पाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप यहाँ आए और हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू हुए। अब मैं इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपको मीठे मीठे सुरीले गीत हम बीच बीच में सुना रहे थे, तो अभी भी जाते जाते मैम के एक गीत के साथ छोड़े चले जाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आए ये भी हमें बताएं, और ये बताने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। अब हमें दीजिए इजाज़त, आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और सुनते रहे 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: तो मुझे ये गाना अनाड़ी पिक्चर का बहुत पसंद है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द में

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। एडिटिंग व रिकॉर्डिंग किया दीपक कश्यप ने। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विस्ता की पेशकश।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विथस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विथस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਸਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ
2: 90.0 ਮੈਗਾ

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

तम्मी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
1: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
2: कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जी

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: उस पथ

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी किरणी एक बार फिर हाजिर हूँ रेट्रो हिट्स के एक और एपिसोड के साथ। बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, बिना तेरे जिंदगी से शिकायत क्यों करूं भला, गिला तब करूं जब तुम साथ होके भी पास नहीं हो।

जान तुम पर निसार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ, मैं नहीं जानती दुआ क्या होती है।

0: तुम हर जो उधर मुंह फेरे।
1: हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जिन पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख, रफ्तार जिंदगी की कुछ यूं बनाए रख कि दुश्मन भले ही आगे निकले, दोस्त कोई ना पीछे छूटे।

मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब। मुस्कान बनाए रखो, सब साथ हैं गालिब, वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। वरना आंसुओं को आंखों में भी पनाह नहीं मिलती।

तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ करना ए जिंदगी, तुझको ही नहीं जी पा रहे हैं हम।

कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं।

मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे। मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद के देखे, लेकिन जिंदगी फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। जय हिंद।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवां हैं अपने सफर पे, और दूराने सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है। फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदा जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लगातार रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, चाहूंगी आपसे आज्ञा। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।